0: हेलो कतु भाई, वेलकम। ये बोस अविंद का कॉलेज से संगले तेरी आईली
1: दे वही अंगसर कितेंगे आशा मुलाइने तू एटलीस्ट सा सही मीटिंग मुंतस थे ना।
0: हाँ वही तू का अविंद चार वरा मिले। एक्चुअली मीटिंग साढ़े चार वरा तुझे कदे तिक्के उलवे अमुनो अविंद तिक्के विज्ञापिले
1: कितें ते उलों को वो तीसरे वर्दिसो संग नेंगे सक्कर संगा बरिसो वो ही एक
0: तून तिक्के सुख समझले या संगा को एक विशेषता असा अंतु बैल हाडा मरना वैयक्तिक रीतिन अमकान समिति दों कसा असो घडणार सान फ्रान्सिसा सीसी आचा विचेंत तुका पहिले सांगता या मीटिंग वाला नका आम्ही तिके बाहेर बसांगी या या

0: हेलो कतु भाई, वेलकम। ये बोस अविंद का कालस संगले परी आईली।
1: देवी अंगसर कितेंगे आशा मुलाइने, तू एकलीस सही मीटिंग मुंतस्ते ना?
0: हाँ वही, तू का अविंद चार वरार मुले। एक्चुअली मीटिंग साढ़े चार वरार, तुझे कड़े तिक्के उल्वे अमुनोनु अविंद तिक्के विज्ञा पेले।
1: कितें ते उलों को वो तीसरे वर्दिसो संग नेंगे सक्कर संगा बरिसो वो ही एक
0: तून तिक्के सुख समझले। या संगा को एक विशेषता असा अंतु बैल हाडा मरना वैयक्तिक रीतिन अमकान समिति दों कसा असो गडनार सां फ्रांसिसा सीसी अच्छा विचेंत तुका पहिलें संगता। या मीटिंग वाला अंतर नका, हम इतके बाहर बसेंगे। या